0: भन्दा अशोक साल त ढुक्क नआरे बल्ली
1: हाँ त पोर्सालिक बाट सम्झोट आम्मिन्दर लक्ती र हटबरा पानी वर्ष बेर अस्ट छिमछाम कहाँ र सिक्दा त सोचो त लट्ठी ठिक्कम घर दान दान पानी वर्ष टिकी मन छटपटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम्ब ढिकुम छ सुरक्षित ठाउँ सरली नआरे बल्ली
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालोमा बहिने ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण कर सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हिलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: साइना मेडिकल हल भुरीगाँव में विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना यही साउन 9 गते शनिबार का दिन
5: बिहान 10 बजे देखि
4: साइना मेडिकल हल भुरीगाँव में रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस् दिइने सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4-5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान पाठेघरको जाँच लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच पत्थरीको जाँच पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच थाइराइड स्क्यान सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ सम्पर्क साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9842455909 र 9842455717
6: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज

0: सूचना समाचार अनि मनोरञ्जनको साथी रेडियो टाइगर
1: साइना मेडिकल हल भुरीगाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना यही साउन 9 गते शनिबारका दिन
2: बिहान 10 बजेदेखि
1: साइना मेडिकल हल भुरीगाउँमा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। दिइने सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4-5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान, पाठेघरको जाँच, लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9842455909 र 9842455517।
3: बाबु, एउटा राम्रो घरको नक्सा बनाउनु पर्यो।
4: राम्रो सँगसँगै बलियो, बस्न योग्य र किफायती घर पनि बनाउनु पर्छ नि काकी।
3: बस्न योग्य र किफायती भन्या चाहिँ के हो बाबु?
4: हेर्नुहोस् काकी, हाम्रा पूर्वजहरूले हिमाल, पहाड र तराईमा हावापानी अनुकूल घर बनाउथे, तर अचेल सबैतिर हावापानी अनुकूल नभएका एकै खाले घर बन्न थालेपछि गर्मीमा तातो र जाडोमा असाध्यै चिसो हुने गरेको छ, जसले अनेकौं स्वास्थ्य समस्या निम्तने। पंखा, एसी र हिटरहरूको बढी प्रयोग गर्दा बिजुलीको खपत बढी हुन गई बिल धेरै तिर्नुपर्ने भइरहेको हुनाले आर्थिक भार बढिरहेको छ।
3: तिमीले त बडो गम्भीर कुरा पो गर्यौ बाबु।
4: हो काकी, बस्न योग्य घरमा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, आर्थिक भार कम पर्छ र यस्तो घर बनाउन बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जा पनि पाइन्छ। थप जानकारी चाहिएमा आफ्नो पालिका वा पिन परियोजनाको फोन नम्बर 01-5421-760 सम्पर्क गर्नुहोस्।
5: अब बन्ने घर बस्न योग्य घर युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा पिन परियोजना तथा ठाकुर बाबा नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: जीत पुरवाली, यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
7: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जूटे राय लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
6: हाँ, तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल कर।
8: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
9: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
0: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ।

प्रिय मैगर कविला उग्र जय मसी और नमस्कार। मैं अपना हुकन के सामु फे महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाटू। आज हमारा परमेश्वर का ना शीर्षक मा वचन हेरा दाई थी जी हाँ हमारा दोसरो खंड के रूप में लिखला बाटी। कविला उग्र मई समय परमेश्वर के बारे में बात बटोती बाटू और आज वह विषय है अपने हुकन के बीच में फेसबुक लेकर आये बात। आशा बात सब जना ये वचन है सुनती बाटी। वह परमेश्वर हुई था जे हमन वहाँ धर्म शास्त्र देला। वह परमेश्वर है आज विश्वासी हुकर आराधना करता मंडली में उनाव है येशु के कहत जुन चाहे त्रियक परमेश्वर का दूसरो व्यक्तित्व हुई था। त्रियक परमेश्वर चाहे सत्य परमेश्वर हुई था याकर अर्थ चाहे तीन परमेश्वर का लक नहीं हो ये चाहे झूठा शिक्षा को ग्रहण करता तर एक परमेश्वर जे अपना है तीन व्यक्तित्व में प्रकट करेला। वहाँ पिता हुई था जे सारा चाजक रचयिता हुई था और हरेक चाजक सुरक्षा करता। वहाँ छावा येशु ख्रीस्त हुई था जे अपन स्वर्गीय सिंहासन छोड़ला और इस संसार में मानव चोला लेकर आयला जे कन्या कोक से जन्म लेला। वहाँ मानव चोला लेला और वह समय में वहाँ सत्य परमेश्वर रहा जे क्रूस ममूला और बौरी उठला ओ स्वर्ग में गईला। वहाँ फेसो की संसार में करा प्रतिज्ञा करला जी हाँ न्याय दीन कह का कथा। वहाँ परमेश्वर का छावा सत्य परमेश्वर हुई था वहाँ पास पवित्र आत्मा हुई था। त्रिय कट्टो तेसरो व्यक्तित्व के रूप में पवित्र आत्मा है व्यक्ति जे मन हुकन परमेश्वर का वचन का विश्वास अंठा हुकन की हृदय में ओर से त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा चाहिए सत्य परमेश्वर हुई था। कोई भी और झूठा परमेश्वर अपने स्वर्ग में ले जीना भरोसा और विश्वास दी गल से वो अपने है निराश पारी का करे की स्वर्ग में जीना डगर चाहिए येशु के लिए खुई था और स्वर्ग में जाय लाग अपना पापक क्षमा अपना पाए पर था और येशु है बिना ग्रहण कैला अपना पापक क्षमा हुई नहीं सकी। जब अपना परमेश्वर का कृपा और वहाँ भलाई के बारे में बात बटोबी कल से और बटोई थी कल से वहाँ बात सब मन नक लाग दिहल दा वही चाहे हमारा क्रिश्चियन विश्वासी नक लाग दिहल और डेला उद्देश्य हो। यदि कोई विश्वासी हूँ कहीं का कहीं कल से वो परमेश्वर का वचन है लेकर और मन नक और मन सुनैना जारी कहीं ना जरूरी बा वो सुनैना और सुनाई जीना आवश्यक बा। इस बारे में यदि अपना ऐतिहासिक प्रतिवेदन हेदान से मन लगा के हेरबी कल से भेटते भी आई रोमी 11 अध्याय हेरी जहाँ प्रेरित पावल मंडली है बहरना रुखक रूप में बटेला बाट हमारा विश्वासी बहरना जरूरी बा कहीं का पावल का था। हमारा जित्ती रह ख्वादती कल से हमारा बहरना आवश्यक बा ये चाहे परमेश्वर का सिद्धांत हो। जीवन रहना हरेक प्राणी रुखवा बरिखवा हरेक चाज बहत ये बात हमार सत्य विश्वास का संदर्भ में फैला हुई था। यदि हमार विश्वास जागतिक और जित्ती हो कल से वो बढ़ा पर था वो परिपक्व हुई पर था परमेश्वर का वचन में बढ़ाक लागे तो प्रक्रिया है अपना लिया से ऊ चाहे प्रार्थना हो। जब अपना वहाँ वचन का प्रयोग कर भी पवित्र आत्मा अपना है सहायता करही आशीष दी। अब हमारा रोमी 11 अध्याय हेरी ये चाहे परमेश्वर का राज्य के बारे में बात बटवा जी हाँ हमारा मंडली अथवा परमेश्वर का जन कई कथी जुन कलक पुरान करार अनुसार यहूदी जाति कलक ये चाहे हुकनक बारे में बात बटवाए जहाँ बताए कि परमेश्वर हुकनक लाग मुक्ति देला और हुकर ध्यान जन वहाँ इनकार करला। विशेष कह का परमेश्वर हुकनक लाग मुक्ति दिहक लाग मुक्तिदाता हाँ पठेला तर वो मुक्तिदाता हाँ हुकर इनकार करला हुकर येशु में विश्वास नहीं करता हुकर जाकर प्रखाय में बात वहाँ येशु हुई तक कह हुकर नहीं स्वस्थ जहाँ बटाए रुखम सुखल हांगिया रहा जहाँ वो मरल हुकर उही से उही न रुख से छुटेला। रोमी 11 अध्याय बताए कि उस समय में यहूदा में ढ्यार मने हुकर विश्वास नहीं करल रहा परमेश्वर का निराशपन का बारे में कोई भी विश्वास नहीं करल रहा वही बात पवित्र आत्मक शक्ति में प्रेरित पावल लिखता। अब वो मौका गई यहूदी हुकन दे जाए पावल एकदम पूर्ण रूप में विश्वस्त रहा कि वहाँ है परमेश्वर अन्य जाति हुकन बीच में चौकाई करक लाग बलैला और से पावल गई यहूदी मन हुकन थे गैला वो कल उडार यहूदी मन नक लाग दिहल बारा तर अब उडार तुनक लाग फे वहाँ सारा मन हुकन प्रेम करता कौनो वर्ग कौनो समूह के लिखना ही तर सारा मन हुकन परमेश्वर प्रेम करता वहाँ छावा येशु क्रूस ममूला ताकि हमार पाप क्षमा हुआ और हमारा वहाँ क्षमा दान पाए सकी ये सारा मनैनक लाग क्रूस में कमा गैलक उपहार हो। ये मौका फायदा जो वहाँ में विश्वास करी वह के लिख लिया पाए ये चाहे ओसिन जस्ता हो जुन उपहार में अपना नाव लिखल बा और जना आकर कहत कि ई तोहार लाग हो आओ लेकर जाओ ओ अपना कली कि ई मोहर लाग नहीं हो मैं नहीं ली हम और ऊ अवश्य अपना लाग तरह तरह अपना उही नहीं ले ली और नहीं पैली तरह ऊ अपना लाग रहा। येशु
सारा मनेनक लाग मुला यामा कोनो शंकै नै हो। संसारमा रहल हरेक मनेनक लाग तर जे उहाँमा विश्वास करी उहाँमा आई उहाँका पाप के लिए उहाँमा क्षमा हुई ओ अनन्त जीवन पाए ओर से पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँ शक्ति हमारमा पठेला ताकि हाम्रो परिवर्तन हुई हमार जिद्दीपन है मूर्खपन है टूरा से की और हमारे हृदयमा विश्वास आई से का ताकि हमरा ई बाटा विश्वास कर सकी और परमेश्वर है धन्यवाद की अपना मार पाप से महीन दूर कराइक लाग अपना अपन छाव येशु यहाँ पठेली हमरा वहां में विश्वास करना अर्थ चाहिए हमरा वहां में परिवर्तन हुई लखो ई चाहिए लौ जीवन लौ विश्वास और लौ जन्म हो परमेश्वर का वचन कसी का अन्य जाति न माज माइल का न बात हमरा बटोली रोमी 11 अध्याय में और याकर मतलब ई नहीं हो कि वहां यहूदी होकर परमेश्वर में विश्वास नहीं कर लगा फिर नहीं हो का कर कि आज ढेर यहूदी मन होकर फिर एक परमेश्वर में विश्वास कर ला बाटा और येशु प्रभु यहाँ अपन व्यक्तिगत रूप में मुक्तिदाता रूप में स्वीकार कर ला बाटा रोमी 11 अध्याय ऐसे ही बारे में फिर बताए जुन ख्रीस्ट का बारे में भविष्यवाणी अपने क्रिसमस का समय में क्लिक सुनल हुई थी जहाँ ठुठा मन से निष्कल जीवन के बारे में बताई लबा ई वचन मैं बताए कि यहाँ बचल का जो शब्द बा वो बड़ा गहीर अर्थ दिहल बचल अर्थ चाहे जित्ती का ना बुझाए ओ आमीन वहीं से आईना आशा के बारे में बताए ये चाहे रोमी 11 अध्याय में ये बात हमारे बताई सक थी कभी लाहूकर अपना जीवन पूर्ण रूप में बचल बा का नाम आशा के लगा ओ येशु के बारे में अपना सुनैला मने हुकर सुनला परमेश्वर का वचन हुकन अपना सुनैली कई कमय आशा कैल बाटो हुकनक लाख पवित्र आत्मा में प्रार्थना करी हुकनक लाख प्रार्थना करक लाख कही ताकि हुकरा येशु में परिवर्तन हुई ओ आपन जीवन में प्रभु येशु हां व्यक्तिगत रूप में चिन्ह सेकत ओ हुकरा जीवन में अनंत जीवन पही ओ हुकरा अनंत जीवन पहली का बाटम हुकरा निश्चित हुई सेकत जब हुकरा निश्चित हुई अपना साक्षी कई को परमेश्वर का ख्रीस्त येशु का देखायल डगर में न्यागती वहां के चेला हुई थी अनि उसु समाचार कर्म काम अपना जिम्मेवारी अपना अभिभार आज एक मंडली है परमेश्वर देला बाटा आज की वचन द्वारा परमेश्वर अपना हथियार आशीष दिया आमीन।

प्रिय मैगर कवि लाहुद्रा, आजिक कार्यक्रम सुनके अपने हिन कसिन लागल? आशा बा पक्कै फेन आशिषमय लागल हुई। यदि ई कार्यक्रम के लाग

0: 2 MHz गर्जनका सधैँ बाजुन
1: साइना मेडिकल हल भुरीगाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना यही साउन 9 गते शनिबारका दिन
2: बिहान 10 बजेदेखि
1: साइना मेडिकल हल भुरीगाउँमा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। दिइने सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4 देखि 5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान, पाठेघरको जाँच, लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क साइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9842455909 र 9842455717।
3: जितपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हुई गवा गए।
4: हाँ तब पतलिया याद करो तो जूटे राय लागा था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
3: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गए।
5: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
6: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
7: भुरीगाउँ बजार त आइयो, अब भोकै घर जाने कुरा पनि त भएन।
8: जहाँ पाए त्यहाँ नास्ता खाने कुरा पनि त भएन।
7: जहाँ पाए त्यही जाने पनि होइन। भुरीगाउँ बजारको बाटो भन्दा पारी साउथ मिष्ठान्न भण्डार छ, हेर त त्यही जाने हो नि।
9: साउथ मिष्ठान्न भण्डारमा चिया, छोला समोसा, दुनट पकौडा, चाउमिन, भटौरा पाउनुका साथै अर्डर अनुसारका केक र सबै प्रकारका मिठाईहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। स्मरण रहोस्, हाम्रो यहाँ स्पेशल खुवा उपलब्ध छ। शुद्ध शाकाहारी नास्ताका लागि ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 भुरीगाउँमा रहेको साउथ मिष्ठान्न भण्डारण नास्ता पसललाई सधैँ सम्झनुहोस्। प्रोप्राइटर भीम बहादुर छेत्री। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9842558950 र 9840807761।
10: तपाईँको गाउँमा, तपाईँको ठाउँमा, तपाईँको आवाज, सूचना, समाचार अनि मनोरञ्जनको साथी रेडियो टाइगर।

सूचना समाचार अनि मनोरञ्जन को साथी रेडियो टाइगर रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम यति बेला रात्रि को 9 बजेको छ।